0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:05 हैं, लीजिए सुनिए चिंतन।
3: रामचरितमानस के अंतिम अध्याय में एक प्रसंग आया है। पक्षीराज गरुड़ काक भुसुंडी से पूछते हैं कि आपने हजार योनियों में जन्म लिया है, इनमें सबसे उत्तम योनि कौन सी है? काक भुसुंडी का उत्तर था कि इनमें से मनुष्य योनि सबसे उत्तम है। मनुष्य योनि के सर्वोत्तम होने के जो कारण काक भुसुंडी ने गिनाए, उन्हें सुनकर न जाने क्यों पक्षीराज की जिज्ञासा शांत हो गई। उन्हें फिर पूछना चाहिए था कि मानव योनि पाकर क्या मनुष्य अन्य जीव जंतुओं का जीवन जीने के लिए अभिशप्त नहीं है, और यदि है तो इसका उपाय क्या है। संभवतः तुलसीदास जी के युग में मनुष्य योनि एक वरदान ही रहा होगा। उसे देखकर तो यही लगता है कि मनुष्य जीवन की अपेक्षा अन्य प्राणियों का जीवन कहीं अधिक सुखी और सुरक्षित है। बाह्य जगत की आपाधापी और अंतर मन का द्वंद्व आज मनुष्य जीवन के अनिवार्य तत्व बन चुके हैं। इन तत्वों के मिश्रित प्रभाव से उपजे काम, क्रोध, मद, लोभ उसकी नियति बन गए हैं। इनके वशीभूत वो अपनी जीवन नैया को उस दिशा में ले चलता है जहां क्षणिक सुख तो उसे मिल जाता है, लेकिन अंततः पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। यह पछतावा बीते समय को वापस नहीं ला सकता, फिर पछताने से क्या लाभ? सांप जब निकल गया तो रस्सी पीटने से क्या लाभ? मनुष्य योनि मोक्ष प्राप्ति यानी अनंत सुख प्राप्त करने की अंतिम सीढ़ी है। इस सीढ़ी तक पहुंचने के बाद यदि मनुष्य अपने लक्ष्य को भूलता नहीं तो इंद्रिय सुखों को तुच्छ जानकर वो उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता, और इनसे दूर रहकर आचार, विचार, आहार, संयम और नियम के अनुशासन में बंधकर वो अपने प्रत्येक कर्म को संचालित करता है। ये अनुशासन उसे आत्मानुभूति कराता है कि वो अपने में ही संपूर्ण इकाई नहीं है, वरन वो समाज का एक अंग मात्र है। शरीर तो पूरा प्राणी जगत है, मानव जगत ही नहीं, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पूरा प्राणी जगत का वो एक हिस्सा है। यही है वो अनुभूत जो जीवन को सुखी और सार्थक बनाती है। यही है वो अनुभूत जो मनुष्य को स्वकेंद्रित यानी स्वार्थी होने से बचाती है। समाज के हित में स्व का हित तलाशने की सीख देती है। जीवन का सुख और जीवन की सार्थकता भी इसी अनुभूति में निहित है। इस अनुभूति की प्राप्ति के लिए किसी कठिन जप तप की आवश्यकता नहीं। हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों ने जप तप के कष्टदायक कठिन मार्ग पर चलकर हमारे लिए बहुत ही सुगम मार्ग ढूंढ निकाला है। वो मार्ग है आचार, विचार, आहार, संयम और नियम के अनुशासन को अपने जीवन में उतारने का। जिसने अपने जीवन में इसे उतार लिया, उसे सहज में ही वो सब कुछ मिल जाता है जो ऋषि मुनियों को कठिन तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था।
2: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सुखी और सार्थक जीवन के संबंध में विचार। वाचक स्वर था विभूति भूषण भट्टी का। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम मातृभूमि को नमन करते हैं जिसने जीवन दिया, जीने के साधन दिए और सपनों को साकार करने का माध्यम दिया।

मातृवंदना के बाद आइए सुनते हैं दुख हरता सुख करता विघ्न विनाशक भगवान गणेश की वंदना, और सुनते हैं ये भक्ति रचना।

अनूप जलोटा के गाय इस भजन के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रा सिंह की आवाज़ में मीराबाई का ये भक्ति पद। इरेवन, भगवान की ओर लगाव होने का नाम भक्ति है और भक्ति कभी पूर्ण नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। पर भक्ति वही होती है जहाँ प्रेम होता है, प्रेम वही होता है जहाँ अपनेपन में सुख और स्वार्थ की गंध नहीं होती, और प्रभु से प्रेम जीवन को खुशियों से भर देता है।

अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र मेहता और नीना मेहता का गाया ये भजन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। रिमन, ईश्वर एक है चाहे हम जिस नाम से पुकारें। ये इबादत, प्रार्थना या वंदना या आराधना उस परम पिता परमेश्वर तक अवश्य पहुंचती है। बस जरूरत है कि हम निस्वार्थ भाव से प्रभु का सुमिरन करें, गुणगान करें।

है वो ऐ बदनसीब बंदे, तुझको खबर नहीं है उसके करम पे गोया तेरी नजर नहीं है। इंसान होश में आ, नादान होश में आ, कर ले खता से तौबा, वो तुझको बख्श देगा मायूस।

अभी आप सुन रही थी भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:40 हुए हैं, लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान का संगीत पद पाठ।

श्री राम भक्त ऐसा मानते हैं कि चैत्र मास की नवमी तिथि को सभी तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। श्रद्धालुजन पवित्र सरयू में स्नान करते हैं। इस पवित्र नदी के दर्शन, स्पर्श और जल के पान से सभी पाप मिट जाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्यापुरी मोक्षदायिनी है। श्रद्धा की इसी भावना से गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम की निर्मल कथा के लेखन का आरंभ यहां किया। रामचरितमानस को सुनने मात्र से अपूर्व शांति मिलती है। विषय वासना की आग में जलता मन रूपी हाथी यदि इस मानस रूपी सरोवर की शरण आ जाए तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनियों के प्रिय इस मानस रूपी कथा की रचना देवाधिदेव महादेव ने की थी। सो अवसर आने पर मन में रची ये कथा उन्होंने देवी पार्वती को सुनाई। उसी सुखदायिनी कथा का वर्णन तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। भगवान शंकर की कृपा से उनमें सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप वो एक समर्थ तथा श्रेष्ठ कवि कहलाने के अधिकारी हुए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का संगीत पद पाठ। कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर। FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम स्पोटलाइट, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका और रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 8:30 पर सूचना पर कार्यक्रम होगा। नमस्कार देहरादून। साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला आप सुन सकते हैं रात्रि 8 बजे। बहनों के लिए महिला जगत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 12:30 पर। युवा साथियों के लिए युवावाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत श्रोता सुनेंगे स्टूडियो से बाहर के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम हिमाचली और उत्तराखंड की संस्कृति को केंद्र त्यूनी, प्रस्तुति होगी विनय ध्यानी की। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 7 बजे सुनिएगा लोकगीतों रागनियों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा दिनेश डंडेरियाल का ख्याल गायन। सुबह 7:30 पर आप सुन सकते हैं शैल संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे कविता देवी के गाए जौनसारी लोकगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में सेठ पाल सिंह और साथियों से रागिणी आप सुन सकते हैं सुबह 10:35 पर। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा साजन बाबू कव्वाल और साथियों से कव्वाली। सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में छाया गांगुली के गाए भजन सुनवाए जाएंगे रात्रि 8:15 पर। फिल्मों की संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों की मोती आप सुन पाएंगे सुबह 7:10 पर और फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे सुबह 9 बजे। दिन में 11 बजे, 1:15 पर, 2:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम में, दिन में 3 बजे, शाम 4:30 पर एक कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत, शाम को 7:40 पर और रात्रि 8:30 पर। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंता प्रवाचिका रचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थान गुजरात राज्ययोः एकदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री सर्वप्रथमं राजस्थानस्य यात्रां करिष्यति, यत्र असौ अद्य प्रातःकाले जोधपुर विमानपत्तनस्य नूतन टर्मिनल इति भवनस्य उद्घाटनं करिष्यति। 80+400 कोटि रूप्यकाणां इयं परियोजना वार्षिकं 20 लक्ष यात्रिणः संचालयितुं परिकल्पितमस्ति। असौ जोधपुरे संशोधित उड्डयन योजनायाः शुभारम्भोऽपि विधास्यति। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं विमानन आधारित विकासस्य अग्रिमचरणस्य गतिं वर्धयितुमस्ति। एतदनन्तरं श्रीमोदी बालोतरा नगरस्य यात्रायां भविष्यति, यत्र असौ अद्य मध्याह्ने प्रायः 6,000+ कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां लोकार्पणम् उद्घाटनम् आधारशिलां च स्थापयिष्यति। श्री मोदी राजस्थान प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु नियुक्तेभ्यः प्रायः चतुःपञ्चाशत युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि प्रदास्यति। अनन्तरं सायंकाले प्रधानमंत्री मोदी गुजरातस्य यात्रां करिष्यति। पाकिस्तान देशात सीमापारस्य भयोत्पादनस्य निरंतर प्रयोजकत्वस्य प्रतिक्रिया रूपेण सिंधु जलसंधि स्थगितः अस्ति। गतरात्रौ नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् सिंधु जलसंधि विषये भारतस्य स्थितिः सुसंगता अस्ति। सः अवदत् यत् पाकिस्तान देशः सीमापारस्य भयोत्पादनस्य समर्थनं विश्वसनीय रूपेण अपरिवर्तनीय रूपेण च त्यक्तव्यम्। तीस्ता नद्याः समग्र प्रबन्धन पुनर्स्थापन परियोजनायाः विषये श्री जायसवालः बांग्लादेशस्य विकास साहाय्यं प्रति भारतस्य दृष्टिः अपि प्रकटितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहान च एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टेः तस्य प्रभावस्य च स्थितिं समीक्षितवन्तौ। श्री शाहः सभायाम् अवदत् यत् एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टिं संभावित अनावृष्टेः स्थितिं च प्रशासनं निरन्तरं निरीक्ष्यमाणमस्ति। अद्यावधि संपूर्ण राष्ट्रीय राजधान्याम् 1,02,000 गणना प्रपत्राणि अंगीकृतानि। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयस्य अनुसारं दिल्ल्यां मतदातृ सूच्यां विशेष गहन पुनरीक्षणस्यांश रूपेण प्रायः 14,000+ प्रपत्राणि अधुना यावत् वितरितानि सन्ति। सम्प्रति दिल्ल्यां मतदातृ गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। अन्तिम मतदातृ सूची अक्टूबर मासस्य 7 दिनांके प्रसारयिष्यते। पुरुषाणां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया 20-20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धा अद्य मैनचेस्टर इत्यत्र भविष्यति। स्पर्धा भारतीय समयानुसारं सायं 7 प्रारप्स्यते। चेस्टर ले स्ट्रीट इत्यत्र वृष्टिकारणात् 5 श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा निरस्तीकृता आसीत्। तृतीया स्पर्धा जुलाई मासस्य 7 नॉटिंघम इत्यत्र क्रीडिष्यते। ब्रिस्टल साउथहैम्प्टन इत्येते नगरे 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः अन्तिमयोः द्वयोः स्पर्धयोः आतिथ्यं करिष्यतः यत् जुलाई मासस्य 11 समाप्यते। एतदनन्तरं भारत इंग्लैंड देशौ त्रिस्पर्धानाम् एकदिवसीयाम् अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलां क्रीडिष्यतः। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्वकप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan.

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को, फिल्म का नाम था मुनीम जी, गीत था साहिल लुधियानवी का और संगीत एचडी बर्मन का था। गीतों की मोती कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म भरोसा से, आवाज़ है मोहम्मद रफी की, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार रवि।

0: ये था फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतों की मोती FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी।

पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर आज से 18 जुलाई तक सेवा सुशासन एवं समर्पण की थीम पर प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा का आयोजन। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन आयोग की अहम बैठक। दलों से 100% बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त करने का आह्वान। देहरादून में पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं के लिए गृह कर छूट के आवेदन की शुरुआत 15 जुलाई से की जाएगी। और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ धाम चढ़ावा प्रकरण में दिए जांच के आदेश। कथित हेराफेरी मामले में दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई।

0: अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर सेवा सुशासन एवं समर्पण की थीम पर आज से प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश के IGPL परिसर में इसका शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के कई जिलों में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाएगा ताकि पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान आमजन को सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार की योजनाओं और 5 वर्षीय उपलब्धियों का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर कल सचिवालय में राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 71 लाख से ज्यादा मतदाताओं के गणना फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। राज्य के लगभग 8,39,000 से ज्यादा मतदाता अनकलेक्टेड श्रेणी में है, जिनमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, पहले से पंजीकृत और अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं। श्री जोगदंडे ने कहा कि प्रदेश में 1 जुलाई 2026 की आहर्ता तिथि के आधार पर SIR प्रक्रिया जारी है। 7 जुलाई तक प्रदेश में गणना पत्रों के वितरण और डिजिटाइज का काम पूरा होगा और 14 जुलाई को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया जाएगा। 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच दावे और आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक नोटिस की अवधि और दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 15 सितंबर को किया जाएगा। वर्तमान में 11,733 पोलिंग बूथ के सापेक्ष वर्तमान में प्रदेश में राजनीतिक दलों की ओर से 23,102 BLA की तैनाती की गई है। देहरादून में पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं को गृहकर में छूट देने के लिए 15 जुलाई से आवेदन शुरू किए जाएंगे। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल ओम प्रकाश परसवान सेवानिवृत्त ने बताया कि विभाग के जिला कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 15 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे। उन्होंने जिले के सभी पात्र पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं से अपील की है कि वो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना निर्धारित समय अवधि के भीतर अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें ताकि उन्हें गृहकर छूट का लाभ समय पर और बिना किसी असुविधा के मिल सके। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के सेलाकुई में 13 जून को असम विमान दुर्घटना में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीद के परिजनों से भेंट कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें इस दुख की घड़ी में धैर्य बनाए रखने का संबल दिया। श्री जोशी ने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह का सर्वोच्च बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा बद्रीनाथ धाम चढ़ावे और दान में कथित हेराफेरी मामले का संज्ञान लेते हुए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने निष्पक्ष जांच के समिति गठित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद अगर इसमें कोई भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को एक संगठन से शिकायत पत्र मिला है। इस पर सभी तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान अगर कोई अनियमितता संज्ञान में आती है तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम 1939 और कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने कल आगामी कांवड़ मेला 2026 के सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सीसीआर सभागार में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कांवड़ यात्रा के संचालन के लिए तैयार की गई कार्य योजना पर विभागवार चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री ने सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कांवड़ मार्गों पर स्वच्छता, पेयजल और चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
1: तीस जुलाई से 11 अगस्त तक कांवड़ यात्रा का आयोजन होगा। सरकार ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद हरिद्वार में इस 46,000 का जो बजट की है मांग की गई है, तो इसके साथ साथ हम लोगों ने काफी समीक्षा की है और इसके अंदर ये निर्देश दिए अधिकारियों को कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुचारू रूप से यातायात सुनिश्चित किया जाए। कांवड़ यात्रियों के साथ साथ आम जनमानस को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान रखा जाए। और इसके अंदर जो हमारा जो इस समय क्योंकि रोड वाइडनिंग हो गई है और एलिवेटेड ट्रैक बन गया है, तो उसका भी हम उपयोग करेंगे ताकि सब लोग बड़े आराम से कांवड़ यात्रा संपन्न कर सके। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा के लिए डायवर्जन प्लानिंग, पार्किंग व्यवस्था और संवेदनशील स्थलों की निगरानी की जाएगी। गंगा घाटों और प्रमुख कांवड़ मार्गों पर पुलिस बल सीसीटीवी ड्रोन कंट्रोल रूम के माध्यम से 24 घंटे मुस्तैदी से निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रियों की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ प्राथमिक उपचार के उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं और इसमें वाटर एम्बुलेंस जो है, जिसको हम नहर से लाएंगे, उसका भी प्रबंध किया गया है। इसके बाद हेली एम्बुलेंस की भी इसमें प्रोविजन रखा गया है। मैं देश भर से आने वाले कांवड़ यात्रियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आस्था, सुरक्षा और सुविधा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ साथ एंटी वेलम जो है, वो जो हाँ अभी मार्ग है वहां पर अस्पतालों में उपलब्ध होगा और हमारे कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। हम फूलों से उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हम निश्चित रूप में रिकॉर्ड बनाएंगे और ये रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी।
0: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में कल बोर्ड ऑफ ट्रेड की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने प्रतिभाग किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य साल 2030-31 तक देश के $2 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति पर विचार विमर्श करना था। श्री चौधरी ने उत्तराखंड के निर्यात, औद्योगिक विकास और विशेष रूप से हिमालयी राज्यों की भौगोलिक आवश्यकताओं को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान श्री चौधरी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार राज्य में निर्यात आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य में वर्तमान में पंतनगर और काशीपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो संचालित हैं, जबकि हरिद्वार में एक नए आईसीडी की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर के किच्छा में करीब 800 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर आज से 18 जुलाई तक सेवा सुशासन एवं समर्पण की थीम पर प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा का आयोजन। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन आयोग की अहम बैठक। दलों से 100% बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त करने का आह्वान। देहरादून में पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं के लिए गृह का छूट के आवेदन की शुरुआत 15 जुलाई से की जाएगी। और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ धाम चढ़ावा प्रकरण में दिए जांच के आदेश। कथित हेराफेरी मामले में दोषियों पर होगी सख्त कार्यवाही। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:30 हो चुके हैं। लीजिए कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत सुनिए कविता देवी के गाए जौनसारी लोकगीत। कार्यक्रम में पहले सुनवाते हैं इनका गाई जौनसारी महासुवंदना।

0: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय ITI से।
1: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
0: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
1: ट्वेल्व सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ITI में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
0: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय ITI में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
1: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए आपको सुनवाते हैं कविता देवी का गाया ये जौनसारी हारुल गीत।

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में, क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से UK.GOV.IN पर प्राप्त कर सकते हैं।

0: कविता देवी के गाए इस जौनसरी लोकगीत के साथ ही शैल संगीत का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह की 8 बजने को ही अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना का

0: वर्ने को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्ट्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक वित्तीय तकनीकी निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड गुजरात टुडे टू इनॉग्रेट कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन बालोतरा। Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across the country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today

0: गुड मॉर्निंग सुप्रभात, नमस्कार देहरादून। प्रोग्राम लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं पुष्पा पुंडीर और रहूंगी आपके साथ पूरे 9 बजे तक। श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जिनके जीवन में पद की ऊंचाई तो थी लेकिन उससे कहीं अधिक ऊंचाई थी उनके चरित्र की, विचारों की और उनकी सादगी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की। 4 जुलाई यानी आज ही के दिन साल 1898 को पंजाब के सियालकोट में जन्मे गुलजारी लाल नंदा ने लाहौर, आगरा और इलाहाबाद से शिक्षा प्राप्त की। वो अर्थशास्त्र के प्राध्यापक रहे लेकिन उनका जीवन सिर्फ किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं रहा। साल 1921 में वो असहयोग आंदोलन से जुड़े और फिर देश सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। नंदा जी ने विशेष रूप से श्रमिकों के अधिकारों के लिए उल्लेखनीय काम किया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से जुड़कर उन्होंने मजदूरों की समस्याओं को आवाज़ दी। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्र भारत में उन्होंने योजना, श्रम, रोजगार, सिंचाई, बिजली और गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण दायित्व संभाले। वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान रही सादगी और ईमानदारी। भारतीय इतिहास के 2 कठिन क्षणों में देश ने उन पर भरोसा किया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद साल 1964 में और लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद साल 1966 में उन्होंने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली। गुलजारी लाल नंदा जी उन नेताओं में थे जिन्होंने सत्ता को सुविधा नहीं सेवा का माध्यम समझा। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं आपको और बढ़ते हैं इस प्यारे से सफर में आगे।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे।
1: घटा के संग संग,
2: संभलना।
1: हवा के साथ साथ,

0: लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपने उद्बोधन के माध्यम से समूचे विश्व को भारत के विश्व गुरु होने का संदेश दिया।
1: जी बिल्कुल, विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। आज के युवा के संदर्भ में ये संदेश कितना प्रासंगिक है?
0: बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उठो जागो और ध्येय की प्राप्ति तक आपको रुकना नहीं है। तो मुझे